0: भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0956 53 69 98 550 77 061 98 550 77 053
1: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0956 493 440 493 580 98 550 26 40
2: It's 6 o'clock. अहिले 6 बजेको छ।

0: So this FM 93.2 megahertz.
1: So this time check.
2: इस समय सूचक का सातवां
3: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 53 69 98 550 77 061 र 98 550 77 053
4: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 493 440 493 580 98 550 26 440
1: It's 7 o'clock अहिले 7 बजे को छ
3: खबर तपाईको समुदायको अनि तपाईको सरोकारको
5: खबर तपाईको अधिकार अनि तपाईको अपरिहार्यता
6: तपाई हाम्रै गाउँघरको खबर अनि सत्य तथ्य सन्तुलित र विश्वसनीय खबर स्वदेश खबर

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5550 7071 र 0855 7073 53।
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 26 440।
3: It's 9 o'clock. अहिले 9 बजेको छ।
4: न पक्ष न विपक्ष
5: सधैं निष्पक्ष
6: स्वदेश FM 93.2 MHz
7: पाइपिंग सॉल्यूशंस।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 53 69 98 550 77 061 र 98 550 77 053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 93 440 493 580 र 98 550 26 440
3: It's 10 o'clock. अहिले 10 बजेको छ।
4: विशिष्ट खाता हामी कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा
5: रेडियो
4: विशिष्ट खाता हामी कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा
5: रेडियो

विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा रेडियो।

0: विशिष्ट खाता हामी कामना सेवा कामना
1: सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स हिपको सुपर बिल्ड नेपालस फर्स्ट पीईबी मैन्युफैक्चरर मुक्तिनाथ विकास बैंक मार्बल पाइपिंग सिस्टम अम्बे स्टील्स जे बन्छ दिगो बन्छ।

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 61 र 98 5550 7053।
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4390 580 र 98 5550 2640।
3: It's 11 o'clock. अहिले 11 बजेको छ।
4: विशिष्ट खाता हामी कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो विशिष्ट खाता हामी कामना
5: न पक्ष न विपक्ष सधैं निष्पक्ष स्वदेश एफएम 93.2 मेगाहर्ज
4: सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7071 98 550 7073
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0556 4940 4935 80 98 550 2640
3: It's 12 o'clock. अहिले 12 बजेको छ।
4: A complete piping solutions.

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5550 7071 र 0855 7073 53।
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4493 580 र 98 5506 4040।
3: It's 2 o'clock. अहिले 2 बजेको छ।